0: वीर श्रोताओं, काया कमंडल भरी लिया। यह शरीर अर्थात काया एक कमंडल की तरह है और इसमें उज्जवल निर्मल नीर यानी वह ज्ञान और भक्ति का जल भी भरा हुआ है। साधक ने सब कुछ किया, साधना की, मंत्र जपे, शास्त्र पढ़े, तन मन जोबन भरी पिया। उसने अपनी पूरी शक्ति से अपने पूरे यौवन और उत्साह के साथ उस रस को पीने की कोशिश की, लेकिन नतीजा क्या निकला? प्यास ना मिटी शरीर, शरीर की उस जीव की प्यास फिर भी नहीं बुझी। दोस्तों, यहाँ कबीर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक इशारा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक हम शरीर बनकर उस अमृत को पीने की कोशिश करेंगे, हमारी प्यास कभी नहीं बुझेगी। प्यास रूह की है और हम पानी शरीर को पिला रहे हैं। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, हिरन को लगता है कि सामने पानी है, वह दौड़ता है पर पानी कभी मिलता नहीं। हमारी दुनिया की दौड़ भी ऐसी ही है। हम बाहरी चीज़ों से अपनी आंतरिक प्यास बुझाना चाहते हैं, जो मुमकिन ही नहीं है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने जीवन की भागदौड़ पर नज़र डालिए। हम क्या ढूंढ रहे हैं और क्या जो हमें मिल रहा है उसमें हमारा मन शांत हो रहा है? अक्सर हम सुविधाओं को ही सुख समझ लेते हैं, पर सुख तो मन की एक अवस्था है। आज कोशिश कीजिए यह समझने की कि आपकी असली प्यास क्या है। क्या वह कोई पद है या वह सुकून है जिसे आप उस पद में ढूंढ रहे हैं? याद रखिए, जब तक आप खुद को सिर्फ एक हाड़ मांस का शरीर समझते रहेंगे, आप हमेशा प्यासे ही रहेंगे। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप उस अनंत परमात्मा का हिस्सा हैं, उस दिन बिना पिए ही आपकी प्यास बुझ जाएगी, क्योंकि फिर प्यासा और प्यानी पानी दो रहेंगे ही नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूति आणि आपण ऐकत आहात रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

हलवा, अरे भाई किसी को पूरी हलवा। ओ बेटा जी खिचड़ी का मजा, कभी नरम कभी गरम, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम गरम नरम गरम। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा, कभी नरम कभी गरम।

0: पापा का पासे
1: हाय मर जाऊं
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आरा

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: बापरे
1: कल मैंने देखी अजब हसीना प्यार में उसके धड़के मेरा दिल जलता है सीना ढक ढक ढक बात को आई बड़ी अदा से बोली क्यों खफा खफा से
0: हाय मर जाऊं
1: हम भी थे एक नजर के प्यासे
0: क्यों नहीं
1: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: होली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

बिठा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरे। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: कैसे हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ू?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
1: आओ।

0: पीजिए सरकार।
1: फाइनल थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी।

0: दीवाना क्या कहेगा,
1: दीवाना क्या कहेगा।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: ट्यून इन एनी वेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो मैं बुला दूं।

सलामी, देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन है गुलामी। देते हैं हसीनों को सलामी, गुस्सा न कीजिए, जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

जैसा भी है अब है तुम्हारा। इधर देखिए नजर फेंकिए, दिल लगी न कीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: या तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मलमल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा।

बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना, ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।